0: एक बात बोलो श्री कालिका माई भगवती की
1: जय।
0: भक्तर भगवान की
1: जय।
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय।
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव वसन कुमा वसन कालिका गोरछ गरुण र दानवहरू नागमा रावण नासिका।

गाने गाए खाए परिवार और गाने फुलाए। चलो जगत में तेरो नाम ढोकरे झोकरे को हेरा यो तो पुत्र शुक्ले विराट को घर में यो बात पकाउने तेरो जेठाने वो तरुणी फकाउने बुद्धि तो छैन तेरा पांच भाई को

नारायण कुलदेव ताकी एक दिन को अवसर सानो सानो मैं जाने जस्तो चाहिए सान सानो टुकुरो यो त गोकुल में जन्मिएको कृष्ण को लीला भन्न मन लागेकाले मैं उहाँहरूसित समय मागेर चाहिँ भन्न खोज्दै छु नारायण।

जंजु बंसिन राधे का लानो जाइनो लानो जाइनो ए कृष्ण लानो जाइनो जंजु बंसिन राधे का लानो जाइनो।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बैलेम थप्लो 7 मेगाहर्जबाट म पत्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुलाई 24 तारिक श्रावण 8 गते शुक्रबार दशमी तिथि भोलिको एकादशीको नाम हरिसैन्य एकादशीको व्रत हो भोलि अनि बिर्सनु होला हरिसैन्य अनि बडो चतुर्मास व्रत लिने पनि हो हरिसैन्य एकादशी अनि तुलसी रोप्ने ओर्ने दिन हो अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पै भरी